0: 搞的，我的孩，我的阿妹给买，这个是这个，那是哥哥，那是这个哥哥，那是真会搞，会给的，滴答几下，滴个一些什么的，给滴几下，母知道出货，知道干呀的没？卡爸爸知道，干的没？知道干一把，卡爸的没？呀，滴个的吧，干过是？
1: 啊，干了，干了。
0: आगम क्या?
1: जीसस से तू तेरे ले जले मुझ खलुआ तुम खोते हैं कौन सा दिखे एलोपना कोटना वास किसी रंजनस में आराम से एक सर जले खले बात जले एंसे से प्रा खुलो कौन सोचे ने कौन औरोचा हो चुका उन पांच जिले में आज अनुकंपा हमारा नहीं है लेकिन आ वाहन आफर लोर और लोर का है तो कौन और होता हो और जो का खुलो तब पहले के आल उन पांच जिले के नाम एन ते साल फिर पहले सुबह और कौन और होता हो ताऊ ना था वहाँ से उन्हें ना हो जो का उन पांच जिले में आने इधर इधर हमारा नहीं है
0: Gas, gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Gas, I'm not going to be able to do this.